0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: Radio Aman Network.
2: Pegham Aman hai.
3: Pyar ki ek duniya lekar.
4: Mohabbat samet kar.
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: आसमानी नुमानी ब्लीच हम तासुलमार किट के मौजूद अनार वाला ब्लीच आसमानी नुमानी आसमानी 24 कैरेट गोल्ड ब्लीच और दिने अलावा आसमानी राइस ब्लीच हम तासुलमार किट के मौजूद और टूर सरा बजमंगा आसमानी सीरम मुकम्मल तुरबानी प्रीवी खा खा मिलावेगी बचरता जी मानसेहर के सुमंगा वास सुकुरी रहमान मेडिकल सो लारी अडा मानसेहरा रॉयल बेकरी लारी अडा मानसेहरा दिने अलावा रिजवान शॉपिंग सेंटर बापा की और उमर नवाज शॉपिंग सेंटर खाकी की अली होलसेल केमिस्ट या कॉस्मेटिक वाला उगई की और माजिद कॉस्मेटिक उगई की आसिम हुसैन कॉस्मेटिक इंडस रोड गाजी की अवधा कशाने केसर जन स्टोर इंडस रोड गाजी और गाजी फ्रेश फ्लावर शॉप गाजी इंडस रोड और जमंग आवाज का दावा की अलग अशोक चर तोड़ी खुद इंसाफदार लेडीज मार्केट छतरप्लेन की किस्मंग आवाज सुकोरी खान शाहजी कॉस्मेटिक कराची गारमेंट्स वाला लेडीज मार्केट छतरप्लेन बटीग्राम किस्मंग आवाज सुकोरी जील मोड़ के मोहसिन शाह कॉस्मेटिक्स वाला सर मेन बाजार बटीग्राम की तासुला ममरीज कॉस्मेटिक्स वाला सर ओसामा कॉस्मेटिक अब्दुल सलाम कॉस्मेटिक अवनियास कॉस्मेटिक्स वाला सर जमघ आसमानी प्रोडक्ट्स मिला सनी बेकर सर जमघ आसमानी प्रोडक्ट्स मिला उसमंग आवाज का दावा की पताकोट के सुकोरी ओसामा कॉस्मेटिक निज यलका चेयर लिफ्ट सर खुआ खां बचिकम बाजार देता कोटल तजमंग आसमानी प्रोडक्ट्स मिला जी और पताकोट की शीना कॉस्मेटिक हाजी जायद सिर्फ सर जमघ आसमानी प्रोडक्ट्स मिला जी और बिशाम की सुमंग आवाज सुकोरी शाह फैसल कॉस्मेटिक मेन बाजार बिशाम प्रिंस सुपर स्टोर मेन बाजार बिशाम शाहजी सुपर मार्ट मेन बाजार बिशाम उमर अली कॉस्मेटिक और दिन अलावा सईद शॉपिंग सेंटर बेली बाबा की जमंग आसमानी प्रोडक्ट्स मिला हुआ जावेद कॉस्मेटिक्स वाला सर हम जी अलपुरे बाजार के तासुल असगर कॉस्मेटिक चिनार मार्केट खुश अलपुरे बाजार खां और जमसम कॉस्मेटिक डेरा बाजार शांगला की जमंग आसमानी प्रोडक्ट्स मिला जमजम कॉस्मेटिक्स वाला सर बख्तियार कॉस्मेटिक डेरो बाजार शांगला के खां और शाहपुर के तासुल इख्तियार शॉपिंग सेंटर वाला सर जमंग आसमानी प्रोडक्ट्स मिला हुआ जी एबटाबाद की वहीद गिफ्ट सेंटर सनी शॉपिंग सेंटर सिंह ब्रदर सर उस इंसाफ दवाखाना सरबन चौक मेन बाजार एबटाबाद जी बाकी जमंग आवास का दावा किसो को ठल की चाय नास्टर वाला सर अधिक मेडिसिन वाला सरा मोमिन मिनियारी होलसेलर जावेद मार्केट बनू अड ठल बाजार और खालिद अवान जन स्टोर गड़ी हबीबुल्ला और शबीर जन स्टोर बिस्मिल्ला मार्केट हसन अब्दाल इस्लामाबाद के तासुल उमर फार्मेसीज वाला सरा अयूब मेडिकल स्टोर ताना रोड फतेह जंग की जमंग आसमानी प्रोडक्ट आसोपे इंतजार दीजिए अवधा वक्त किसे जमंग आवास का सुकूरी हंगूपट बाजार के संगीट बाजार के चिपनू मेरे कॉस्मेटिक स्टोर थे जमंग आसमानी प्रोडक्ट अंदर रसवली दीजिए बाकी जमंग आवास का चार सदक सुकूरी नौशहरा की दरगाह की उत्मानजो की उमरजू की डकी मीराबाद की तंगी चार सदक यानी सदक जी या कोट मंजरी बाबा की या बड़कली की या मेथर गोंड की या फजलाबाद नहर बगाड़ या मशीन जुमासर या शबक दर की जी पन्नू मेरे कॉस्मेटिक स्टोर जी बनू की सराय नोरंगवी कल की मरवती कम्बीरी कलावी का डुमेलवी का शिमाली वजीरस्तान या जुनूबी वजीरस्तान डी ए खान पहाड़पुर या गंडी चौक और तमाम पिशावर की हम समंग आसमानी प्रोडक्ट्स मिला हुए दिलेशी जी और बाकी समंग आवास का बटखेले की सोकुरी अटक की सोकुरी खैराबाद की सोकुरी फतेह जंग की हजरों की पुरन शांगला की या फजलाबाद की यादा का शांति पिशावर के सुमरद कॉस्मेटिक स्टोर जमंग आसमानी प्रोडक्ट्स अंदर रसवले इंशाल्लाह कभी वफासा गान वफाओ का जुन वफाओ के तर सबा पूरी जुनती बारिशु सबा भयो खेस्ता उखकुरी प्रोग्राम सरसा सुबह खिदमत की हाजिरी गु तर अगीद वफुर इखपल रोर डॉक्टर इसरार जान ला इजाजत वर गई दलो अल्लाह पमान आसमानी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: रेडियो अमन नेटवर्क पैगाम अमन है
2: प्यार की एक दुनिया लेकर
1: मोहब्बत समेट कर
3: आपकी जिंदगी में
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: बिल्कुल जनाब, बात हवेली शी निजाम सईद दादे पे मटे सिशार या चार रेडियो मन बटाग्राम दे नेख बनेगा जु कॉल तरफ तो गुरु सोखते हो तो कुम जेना दे मंग सर अस्सलाम वालेकुम जी सोख
1: कफरीन आयशा खबर कौन खैर तासु
0: खैर खियत आयशा तास तो प्रोग्राम के अरकले वायु
1: तेरा माना ना
0: जी प्रोग्राम की तास्ता अरकले वायु
1: जी
0: मैं प्रोग्राम के अरकले वायु सुन रहा हूँ ना प्रोग्राम हो रहे
1: तेरा माना
0: ना जी जी
1: मैं सुन मैं सिर्फ तुम्हें और ही तो
0: मनन को मस्तासो आनंद मंगा लोग वाले साइड टेशन ताऊ सर शोर राजी हेलो हेलो

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग।

रोजगार द पारा शॉर्ट कोर्सेज मेडिकल फील्ड के शॉर्ट कोर्सेज कबूल द पारा बा एतमादा इदारा वर्टेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम वकाला कोर्सेज इज द कबूलो बेहतरीन मौका हेल्थ टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन अलकानो और जिनको द पारा दाखिले शुरू दी दे सरसरा कैटेगरी बी फार्मेसी स्टोर लाइसेंस दबारा होम दाखिले शुरू दी वर्टेक्स कॉलेज बटग्राम मेडिकल फैकल्टी द खैबर पख्तूनख्वाना इलाहाक शिविदा हेल्थ फाउंडेशन के पिके न होम रजिस्टर दा डी एच क्यू अस्पताल बटग्राम के बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग होम दर कबूल कीगी मजीद मालूम दबारा वर्टेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम तो तशरीफ रावड़े पता याद साथ वर्टेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिलमुकाबिल अलफकीर शॉपिंग मॉल नज पी एस ओ पेट्रोल पंप बटग्राम एम डी रहीमुल्ला यूसुफ जई सिपसरा पदी नंबर हम राबित कौलिश है 0997-310-240 मोबाइल नंबर दे 0347-955-43-27

सौ जी ना दाऊ से अपडेट स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट उधर कहेंगे लोकल अपडेट स्लो में देखो अच्छा प्रोग्राम क्रिकेट लीग सीजन थ्री जो कमी जी नाम तरफ दो वाला भी उधर कहेंगे पीसीएल पगोड़ा क्रिकेट लीग हम अखबर अख्ताम तरफ तारे से दो वाले ने सुपर लीग सीजन थ्री आई थिंक आगाज बे सुन इज पॉसिबल बड़ग्राम सुपर लीग फोर चुकम दे जिनाब सीजन फोर अगर आगाज बाकी फाइव दे आई थिंक बहुमा एज सुन एज पॉसिबल हवाले सर चुकम अपडेट्स भी क्या बताओ प्रोग्राम इसे आगे जुड़ा हो थ्रू कॉल थ्रू एस एम एस कॉलिंग नंबर जम का आंसर है सर जी 0309711 8899 0309711899 0309711899 85 83 मोबाइल राइट मैसेज ऑप्शन देते हैं अलग टाइप के आर ए बी लक्षण स्पेस अकबल नाम

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीर उलोशमार कलूना तालीम पर मैदान की खपल खिदमत तबसर कभी नकाम बची खपल बची गणी दौर हाजिर तालीम वरकवल सरा सरा और माशुमानों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खसूसी तवज्जो साथी।